0: प्लीज।
1: और ओके गुलाली, गुलाली अभी मुझे नहीं पता कि भिशाम में हमारी आवाज सुनी जाती है या नहीं, लेकिन शांगला में बिल्कुल जी हमारी लोग आते हैं, हमसे शराकत कर लेते हैं रेडियो दबंग के रास्ते पर। तो शायद लेट्स सी, मैं पूछ लेता हूँ कि भिशाम में कहाँ तक आवाज जाती है, कहाँ तक नहीं जाती। तो लेट्स सी, दोनों पूछते हैं, ठीक है? आप भी किसी से पूछे, मैं भी पूछता हूँ। अगर वह आवाज जाती है तो इतनी हमारे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है गुलाले, फिर मुझे आप बताएं।

0: बताएं, मैं साहिर शाइस्ता लोधी के ड्रामे देखती हूँ और आप मुझे बताएं कि आप शाइस्ता लोधी के क्या लगते हो और साहिर लोधी के, क्योंकि आप हसाम लोधी और ओ शाइस्ता लोधी और ये क्या ले गए आपने और साहिर लोधी, मैं हमारी कोई रिश्ता नहीं है आपस में और वो भी सिर्फ लोधी और मैं भी लोधी और हमारी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है जी। और शाहिद सभा जी के साथ मैंने हल्का पुल्का काम किया था जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। और पता नहीं लगी चिस्ता सुराकानन वली ड्रॉप, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी जो आपने मुझे पूछी, मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ एपे पे तो कोई ना कोई बंदा मुझसे जरूर ये सवाल पूछता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जब बिल्कुल ठीक ठाक हम तासु सरेंगे, तासु शे बराबर ही है, बिल्कुल सतासु आगा नी दिमाग सर सू को दे चरदना, अच्छा मासर लफीफा खबरी की द मर्दान ना प्रोग्राम के तहार के लिए सड़ी मुश बखीर आलियम जी लफीफा खोर। और लबी बस था सु आवाज बिल्कुल कटिंग की था, गुजारे उकड़ी था सुपल खबर जारी साथ ही प्रोग्राम था मुस्तर आउडी देज ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान, नुसंग जमुन कम प्रोडक्ट मो इस्तेमाल करी थी जी। हेलो नमस्ते, सो आवाज उनका टैंक है नुदा बोल सको, यार बस झगड़े दस बड़े जोर को मिनिश तेरे खुजा था सो आवाज मुझसे ही शुजा उस तासो पहले खबर हो कहीं
1: Продолжение следует...

0: हटाना भू
1: ओके जी पवाना की कचा तुम जुमुंग देसन आका कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोडक्ट पकार वी बिल्कुल जी इतफाक पतिन फतनवाल जनरल स्टोर गुलशाजान मार्केट कॉलेज रोड वाना बाजार आहाची बाज मोहम्मद और

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांकी नशिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

4 Karak Radio ya din la 8.4 Tank Radio was wo roi bilkul mota message kawali shi o din alwa call hon kawali shi message ko de para bilkul to se message aur sar se call ko de para to se din number bane message hon kawali shi call kawali shi 0331 52 65 340 char char ke mo aus ho roi नो बिल्कुल मत मैसेज हम कबल जी पदे प्रोग्राम से इनेश मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम से और दिन अलावा कौन है कबल से कोशिश पर बिल्कुल कभी चिन्ह प्रोग्राम से ज्यादा ना ज्यादा कौशल मिल गई और बिल्कुल तो सब तो चेष्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम से कुंदी मुख्तलिफ टाइम बांध कीजिए मशीन तीन ना चार बजे पर हाँ और दिन अलावा दस पे नौ ना दस बजे पर हाँ वर्षा वर्षा सहर टाइम दस ना ग्यारह बजे पर तो सब बिल्कुल पिश कीजिए तो बिल्कुल जर जर मोता प्रोग्राम से मैसेज हो गई शेयर तक आवाज ओवर हुई और कम जीन तमो आवाज जर दरी में बिल्कुल मोता वेलिश प्रोग्राम से अच्छा जी दिन अलावा बोल दाह बराबर से दुकानदारान हजरात चागा प्रोग्राम से इन्हें एशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम से बाकी हो माशाला करी से वही नहीं कारी खिताब से और ऐसे शॉपिंग सेंटर या दिन अलावा मौलाना से मौलाना अब्दुल हलीक से मंगल मिला है इबर पर लगी किसी को दिखो दे दासी कला कला चकार चुकम दर लगवी नो बिल्कुल दा प्रोग्राम जी कम दई ने जुमे पर जे हर जुमे पर तीन चार बजे पर दोस्त पिछकी जी और दा बिल्कुल दस दस प्रेजेंट को नो बिल्कुल आगा दुकानदार दुकानदारान हजरात चागा मिस एशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान सरा बिल्कुल 28 थी नागा प्रोग्राम ते रत लल घोड़ी और बिल्कुल तो घोड़ी चेहरा सा एशमा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम तो वेर छो स्टूडियो तो बिल्कुल वेर छो नागा बिल्कुल अतलाई जी आगे दा मोस्ट वेलकम आगा बिल्कुल मोस्ट रबदी नंबर बाने कांटेक्ट कवली छे 0331 52 65 340 बिल्कुल दाओ हर जुमे पर तुसा प्रोग्राम पेश कीजिए तीन ना चार बजे पर ही अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम से मैसेज से मिलाऊं ब्यागे ना बाद कॉल हम से मिले भी कॉल को तो पर डायल के वाले से 0331 52 65 340

अच्छा जी बिल्कुल, मैसेज कड़ाई दे चाओ देखियो मुझे ना, मैसेज कड़ाई दे जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नियाज मोहम्मद बिठनी लकी मरवतना तारिक भाई तोता असलाम। ओ मौलाना ताज मोहम्मद हकानी तहा सलाम। इश्मा हर्बल आयल और टूथ पाउडर शेष रिजल्ट दाई फाइ डेरा मने ना, थैंक यू सो मच। यो जहान मने ना दिन लबे जी सलाम एंड वेलकम तारिक भाई, आवाज ओके दे 88.4 रेडियो बांदे। आई एम फाइका एंड कैनात फाइका एंड कायनात फातिमा लंडीवा सलाम एवर्ड का लाइवता खानी अरिशा हटाई का जलाल पलव शाह और मलाला भानता हाँ सही डेरा मनना। थैंक यू सो मच फाइका और फातिमा कायनात यू जहान बनना से प्रोग्राम से मैसेज होगा बिल्कुल पा लंडीबे के तो सा जमील खान से सरा द इश्मा टोल प्रोडक्ट में लवी जी।

0: अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम की कॉल हमसे मिले सबसे मैसेज हमसे मिले भी कॉल तरफ तरसी प्रोग्राम से कॉल से मिले भी सो को देखी मुझे ना दे किसी पे कल बनी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो सो को देखी मुझे ना दे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सो खबर की क्या जरा आवाज दे कट की जी सो खबर की क्या जरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक किम देना
1: हेलो
0: जी जी किम देना खबर के भाई हाजी तास आवाज सही मत नरजी दोबारा कॉल कवली जी

अच्छा जी बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल कंटिन्यूस होती हो दसे सो मिनट दोबारा बिल्कुल प्रोग्राम चुकम दे मे बी ट्रांसमिशन चुकम दे ऑफ जी टिकता नो सो मिनट बाद चुकम दे मे बी इंशाल्लाह दोबारा हाजिरी जी नो ट्रांसमिशन चुकम दे मतलब नमालूम वक्त पर चुकम दे आगा बिल्कुल ऑफ की जी टिकवा नो आगे न बाद दोबारा तो खिदमत की चुकम दे इश्म कश्मीर जी को प्रोग्राम दे खिदमत के दोबारा चुकम दे हाजिरी जो नो ट्रांसमिशन बा बिल्कुल सो मिनट दोबारा चुकम दे बन की जी सही ना यानी ऑफ ऑफ जी बिया बचुकम दे सा तो खिदमत के हाजिरी जो

जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल

आफ्नो बिल्कुल हजुर अरविदुन को दुक्षुली वाली दुनिया से यो जाना पेसाना नाम यो दासी नाम चिकुम इंसान वाखली का ना यो दासी नाम नुदी चेहरे बांधी चिकुम तोर तोर तफी भी निशाना थी याद आखुना भी आगा बिल्कुल और ना खत्म सी ओए होए होए होए होए आहा

जी बिल्कुल बिल्कुल यो खूबसूरी वाली दुनिया ची ब्यूटीफुल दुनिया ची यो दासी नाम द परमानेंट सुकुम सिर्फ दिक्षुलु खलको ते हुसन वालो शुलु खलको डिमांड परमानेंट कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान लिमिटेड।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, आदि परमिन कॉस्मेटिक्स प्रोग्राम था माथवेले किसी आरजे तासीर और जी फरीदुल्ला से वही जी इंशाल्लाह इतवार पूरा जी पूरे बा फुल प्रोडक्ट चिकुम दी परमिन कॉस्मेटिक्स वाल बा और वो रसीज है पदे वक्त बने वही से मां सरा मौजूद दी कम प्रोडक्ट मौजूद दी परमिनेंट वाल साबुन मौजूद दा परमिनेंट वाल लगा मौजूद दा अच्छे और तवाई फेस वाश और परमिनेंट वाल जो बल क्रीम चे दे गैर जरूरी विश्तान सफा कोलो पर इस्तेमाल की जा मौजूद दा नो स्पेशल ऐसे कम रूर दाउस खबर कोला इंशाल्लाह सबान बल्कि बलाव रजे इतवार पर रजे तासो फरीदुल्ला दुकान तलार सो इंशाल्लाह फरीदुल्ला दुकान से बाद विश्तानु कलर शिकम द आब हम मौजूद भी आओ विश्तानु कलर से न इलावा शैम्पू शिकम द आब मौजूद आओ टॉनिक पे इंशाल्लाह मौजूद भी शाजी फरीदुल्ला जनरल स्टोर शिकम द या गारमेंट सेंटर शिकम द पता नोट को बिलाल मार्केट बनु रोड बांधे दा आओ द्वम दुकान चिकम दा द्वम ब्रांच चिकम दा फरीदुल्ला जनरल स्टोर एंड गारमेंट सेंटर वाला दगे हाँ एड्रेस नोट को चिकम निज़दो तपरे उसी तवर्सो ब्रांच नंबर दो ही दा पिजू आडे बांधे बनु रोड बांधे शाल जी टक से दी दादवाड़ा नो इंशाल्लाह इतवार पोरा जी اتوار پورا جی بتا سو ورسو او انشاءاللہ سبابا دختیم پورے دغا پروڈکٹ چکم بھی آبا دغا ترور سی سی دغا فرید اللہ خان تبرور سی سی شاد جی خوش آمودا
1: مامی خوارا ندی خوار
0: آئے دو کوڑا کا سلام آوائی

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
2: दुकान पता उखाया
3: हो रे दुकान पता इधर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा।

मेमोरेबल भी है क्या ना। अच्छा गुलू गुलू मरड़े नशी भर की शेगले शेगले दसिद रहमान बिठनी मोर दसिद रहमान बिठनी मोर ये तूर तू दी रिजिश साढ़े करे ते मैं मनी द मार ख्वारिश चला आवाज नडेर खा अच्छी बेजाना ता ची कुंडियानो जुबान कवे डेरा फन कवे स्पेशली द बन जावा।

ओके जी जार जार लाले ए मन मशी लाले अब जो महीने ने शादर हुए ली हाय हेलो भैया हाउ आर यू शिवा भैया शो तो मौसम की तरह कूल कूल है आई एम रुबमले एक जमा खून हाफ से शाह जुर्माना जमा शलिए दो सही था।

Kitsi, thank you for your message. Rubama Lake, I am completely understanding that you are very busy with your college study. Your education is important and I appreciate your hard work. Take care, Nancy. Don't worry, but and not sending SMS regularly. Focus on your study. Take care, Nancy. Very sister. I wish you success in your education and future goals. ठीक है जी कहना विशेष कहे खुला स्टडी का रेगुलर में से मुक्त नहीं सेशन का बोले तो कोई बात नहीं है ठीक है ना और चिकम ने कहना पता रही जमुन का खूर रेगुलर चिकम स्टडी दे पे की बिजी शवी है तो नोम के था फिर शिट कॉम दिस जमुन का खूर चिकम ने कहना आगा और एक ना पेट्रोल पकली शिट डॉक्टर है ना वाशा दो नो ला देता कामयाब है कि जमुन का ख्वाहिश थे सही देखे आई विश यू सक्सेस इन योर एजुकेशन एंड फ्यूचर गोल ठीक देखे ना दादी फरार की तरह तो लाइफ एंजॉय नहीं करती यानी तुम मजे मजे हैं मुझे वेकेशन मिल जाए फिर देखना कि कैसे मैं आपके शो में डिली हो ओके मैंने अरब मलिक पढ़ने लव थैंक्स यू जहान मैंने रखा और बोलो अच्छी भाई मेरा ऐसे में शामिल करो मैसेज रोक लेने जमा खोरे कम मैसेज शामिल कम अच्छे बेजान सलाम में वरे का हम हो रहे हान किरण दिलान मिनाल बतवर रेमला परमुलो वरिशा एवं मैसेज ने आप रमीन हमारे सबसे तरह को सलाम ने मिला ओके सी सुनिए भाई के नए से बाय आप अपना सॉन्ग प्ले करो बाय डियर वीरोनिया एड्स में सोनिया ओके सोनिया